जी हाँ, ये थे नुसरत फतेह अली खां साहब, मजबूत दिल के शहनशाह कव्वाल, जिनकी आवाज उन्हें हजारों के दिल को दीवाना कर दिया. हिज वॉइस टच्ड मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड. और आज उनकी 49th बरसी है. 16 अगस्त 1997 में वो इस दुनिया से चल बसे थे. तो अल्लाह ताला उनको आला दर्जा दे, जन्नत का उनकी मगफिरत करे, ये हमारी दुआ है. महीना है रबीउल अव्वल का और चांद निकल चुका है रबीउल अव्वल का. आज 3 तारीख है. तो ये अतला कलाम, ये चांद रबीउल अव्वल का.

बेशक यह है महीना रबी उल अव्वल का 1448 का रबी उल महीना आ चुका है. महीना है दरूद पाक का, महीना है हमारे आका के मिलाद का, और ये महीना है जिसे स्प्रिंग कहते हैं. तो ये रबी उल अव्वल का महीना है. अगला कलाम है आमीना कलाल अनस रजा तारी साहब की आवाज़ में.

बेशक रबीउल महीना इस्लामिक कैलेंडर का तीसरा महीना है और सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इस मुबारक महीने में हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद हुई। इस महीने मुसलमान दुनिया भर में उनकी पैदाइश का जश्न मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बिदा है और कुछ लोग कहते हैं हमें मनाना चाहिए, तो ये अपनी अपनी सोच का है और हमें ये देखना है कि हम उनकी सुन्नतों पर चले। और उनकी जो सबसे बड़ी सुन्नत ये है कि हम मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, नफ़रतों को हमारे दिलों से निकाल दें, ये सबसे बड़ी सुन्नत है। तो अगला कलाम है साद और हादी साहब की आवाज़ में, या नबी।

बेशक याद नबी का गुलशन महका महका लगता है, शहनशाह कव्वाल नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में। अगला कलाम नामी दानम।

जी ये थे नुसरत फतेह अली खान साहब और हमारी प्यारी आंटी गौरी, वो म्यूज़िक इंजॉय कर रहे हैं, खुर्शीद मेरी प्यारी बहन, और हमारी रशीदा धनसे, ज़ुबैदा अली जो कहती है कि उनका फेवरेट कलाम है उनके नवासे का मोहम्मद ज़िदान का, और मेरी प्यारी दोस्त शायदा कहती है अस्सलाम वालेकुम सबकी, आई एम लिसनिंग, दैट्स हाउ यू मेसमराइजिंग मी माशाल्लाह, टुडे इज़ नुसरत फतेह अली खान 29th एनिवर्सरी, कीप अप द एक्सलेंट चॉइस ऑफ म्यूज़िक, जज़ाकअल्लाह खैर फॉर योर दुआज़, फॉर योर विशेज, रियली मीन्स अ लॉट टू अस. एंड द नेक्स्ट कलाम इज़ ऑल्सो नुसरत फतेह अली खान साहब, और ये कलाम है दूल्हे का सहरा, और वो कवाली गाते गाते जब फिल्मों में भी नुसरत फतेह अली खान साहब गाने लगे तो बहुत ही धूम मची थी. तो ये कलाम है दूल्हे का सहरा, और ये मैं डेडिकेट करना चाह रही हूँ हमारे प्यारे बेटे मसरूर फिरफिरे और नीलम राउत के लिए, जिनकी कल शादी हुई. इस मौके पर मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ. अल्लाह ताला इनका जोड़ा हमेशा सलामत रखे, इनको खुश और खुर्रम रखे, और इनकी झोलियाँ खुशियों से भर दे. इसके साथ भी मैं और एक मैसेज देना चाहती हूँ इनकी बहन मसरूर की बहन शगुफ्ता अरीज, उनकी बेटी अरीज और सामिया जो कुवैत से आई थी शादी के लिए, वो कल फिर कुवैत जाने के लिए तैयार हो गई हैं, और मैं इनके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज अमान में रखे, इनको खैरियत से ले जाए. एंड शगुफ्ता, आई होप यू एंजॉयड योर वंडरफुल स्टे हियर इन केप टाउन एंड टेकिंग बैक गुड मेमोरीज फ्रॉम हियर, एंड मे यू हैव अ सेफ जर्नी एंड कम बैक सून. अगला कलाम दूल्हे का सहरा, नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में.

16 अगस्त 2026 और 3 रबीउल अव्वल 1448 29वीं बरसी नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में, और ये प्रोग्राम हमने खास उनके लिए ट्रिब्यूट के तौर पे पेश किया। तो अगला कलाम अब क्या सोचे क्या होना है।

बेशक अब क्या सोचे क्या होना है जो होगा अच्छा होगा. काफी लोगों का ये फेवरेट कलाम है, मेरा भी बहुत ही फेवरेट कलाम है. बेशक अल्लाह ताला इंसाफ का, भलाई का और करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों और बुराई और जुल्म से रोकता है. वो खुद तुम्हें नसीहत करता है और ताकि तुम नसीहत हासिल करो. इसी पैगाम के साथ मैं सुफिया दलवी रुखसत चाहती हूँ. तकरीबन 9:45 हो चुके हैं. मेरी प्यारी बहन रशीदा मौजिक का मैसेज आया है. सलाम बना लेजेंड दैट विल ऑलवेज बी लव्ड फॉर हिज मेमोरेबल स्पेशली सूफी सॉन्ग्स. ही लेफ्ट बिहाइंड अ ब्यूटिफुल लेगेसी दैट सो मेनी पीपल यंग एंड ओल्ड एंड इवन नॉन मुस्लिम स्टिल एंजॉय अराउंड द वर्ल्ड. माई लेट हस्बैंड्स फेवरेट आर्टिस्ट. आई एम थॉरली एंजॉयिंग द ट्रिब्यूट फॉर द लेजेंड. मे अल्लाह ग्रांट हिम द हाईएस्ट सपोर्ट इन जन्नत. शुक्रन रेडियो 786. जज़ाकअल्लाह खैर आपकी दुआओं का. फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आपके हौसला अफजाई का. इट मीन्स अ लॉट टू अस. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरे हार्ड वर्किंग टेक्नीशियन शब्बीर जेकब्स का, जो बहुत मेहनत करते हैं. हिज डेडिकेशन एंड सिंसेरिटी इज़ वर्थ अप्रिशिएटिंग एंड वेल डन शब्बीर. और आपकी दुआएँ भी मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखती हैं. इसके बाद आप सुनेंगे मेरे मन फ़कीर हो जा तेरे बाद कोई अपना नहीं, और अली मौला के एक मनकबत होगी मुज्तबा अज़ीज़ की आवाज़ में, और सलामी होगी ऐसा बा मुस्तफ़ा से कह देना. इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. फ़ी अमानिल्लाह. शब्बा खैर. जज़ाकल्लाह खैर.

बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। हमारे अशरफ भाई मोती कोरल वाले तशरीफ फरमा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। इनकी मोहब्बत है हमारे नसीर बाबू तशरीफ फरमा है। खरगामा वाले हमारे कादर भाई उर्फ भूरा भाई, संखेड़ा वाले और हमारे जावेद शेख अमोट वाला इवेंट जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इतने खूबसूरत लोगों में मुझे रूबरू होने का मौका मिला। तवज्जो इस शेर पर खास तवज्जो, अशरफ भाई बाबू सभी ने तवज्जो। ऐसे तो मेरे नौजवान जो भाई बैठे हैं, एक बार मैं देखना चाहता हूं आप लोगों का जोश। नारे हैदरी, इसी जोश के साथ दोस्तों ये शेर सुन रहे हैं। हाय हाय, ऐसे तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं मेरे मौलानी ने, मगर दोस्तों ये कुर्बानी मुलायदा कीजिए, तवज्जो।

0: वक्त को देखते हुए दो शेर और पेश कर रहा हूं दोस्तों के सब सब सहाबा से बढ़कर मिला है मेरे मौला अली को। क्या मिला है,
1: क्या मिला है,